0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई। कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई।
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट करी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।

0: भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करिवो कराई।
1: थप आवश्यक सर सल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
0: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालीम केन्द्र खजुरा बांके।

0: जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
1: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
0: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 081535717।
2: आज यहाँ कहाँ भटक थियो?
3: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
2: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर के आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर के आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
3: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
2: संपर्क नंबर है 98487916।
4: ए रुको रुको रुको,
5: के भयो, किन कराएको यस्तो?
4: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
6: के
7: एउटा
1: राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
0: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीबीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
1: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
0: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081531570।

0: Koyle Ponyo.
1: Extreme energy drink.
2: भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो। विगत 18 वर्षदेखि स्वास्थ्य शिक्षामा उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएको नेपालगञ्ज हेल्थ क्याम्पसमा डिप्लोमा इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी एचए आयुर्वेदा अध्ययनपछि औषधि पसल खोल्न मिल्ने एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुल्यो। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक सुविधा र उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण। सम्पर्क भर्ना शाखा 98580604 ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँकी। आजै भर्ना गर्नुहोस्, आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। बिदाको दिन पनि कार्यालय खुल्ला रहनेछ।
3: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
4: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
3: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
4: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
3: सुनो बहिनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
4: और डिजाइन अपने इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
3: काहे न बनाए दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
4: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
3: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
5: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
4: हाँ दीदिया,
6: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680-73-70 और 98195-0-67-82।
7: ए रुका रुका रुका,
8: के भयो, किन कराएको यस्तो?
7: दाई, यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे।
9: के अनलिमिटेड?
10: एनसेलमा डेटा पनि कॉल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्सगेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
8: हो र?
7: हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
11: ओहो, आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस्। एनसेल, नेपालकै लागि।
12: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
13: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
14: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
13: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
14: फोन नम्बर 081-532-375।

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: आजे अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज़ कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

प्राप्त हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: बद्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: नेपालगंज 10 भिरकुटी नगरमा 2055 सालमा स्थापना भएको प्रभात मेमोरियल हाई स्कुल गुणस्तरीय शिक्षामा समर्पित छ। गेटदेखि नै सुरक्षित वातावरण भएको यो स्कुलमा सामाजिक र मानसिक रूपमा सुरक्षित, अनुशासित र संस्कारयुक्त सिकाइ छ। विशेषताहरू: सीसीटीभी सहित सुरक्षित वातावरण भएको, आधुनिक आईसीटी ल्याब भएको, विद्यार्थी केन्द्रित र व्यवहारिक सिकाइ भएको, बालमैत्री वातावरण, यातायातको सुविधा, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिबद्धता। नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 लागि भर्ना खुला भइसकेको छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 98511 48119।
1: प्रभात मेमोरियल हाई स्कुल, नेपालगञ्ज 10 भिरकुटी।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: फिजिशियन सेवा, हाट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बंगारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबीसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबीसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
1: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081414007 र 98482363।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
4: बीर डेंटल
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081532375।
7: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
8: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाइ हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई।
7: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
8: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
7: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
8: थप आवश्यक सरसल्लाह व जानकारी लाग लगभग संघीय व प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय व स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
7: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।
9: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करेला कहटु।
10: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
9: ए बात तो ठीक कहलो, साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त?
10: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन व लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
9: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
10: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरनके स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।

0: बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: भर्ना खुल्यो
2: होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
1: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेन्ट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
2: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
3: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
2: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ है।
3: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
2: थप जानकारीका लागि
3: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर, नेपालगञ्ज बाँके।
2: के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यावहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन्। मोडर्न किचन प्र्याक्टिकल, हस्पिटालिटी ट्रेनिङ, स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा।
4: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
2: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। सिट सीमित छन्। अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल, खजुराचार, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819।
4: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
2: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीवीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
4: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल, बिपी चोक, नेपालगञ्ज।
2: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
5: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करेना कहटु।
6: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन। पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफारकैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
5: ए बात त ठिक कैलो, साँच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
6: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कै जाइत।
5: ए ओसिनो कला से उहै जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
6: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा।
5: डुडुहा कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिदा हो
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सकको वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइट ओत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजुइना कान कम सुन्ना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचारो परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के ला कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलात
5: ए ओसिड हो कलसे बुडू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
7: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848206697 9858023697 वो 9804 83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: सखी बहुत मूड पिरात है, का पूछो ना, बहुत गर्म लाग है।
1: हाँ सखी मूड पिरात है।
0: हाँ
1: अब गर्मी भी काफी बढ़ गया है ना सखी, के वजह से भी गर्म के वजह से भी मूड पिराए लगत है।
0: बस ओके नाम है सिर्फ मूड पिराए लागत है कि
1: गर्मी के नाम सुन
0: के गर्म के ताप गर्म बढ़ते जाते है ना सखी, तो कुछ काम करे मन भी नहीं लागत है। और ऊपर से इधर देखो कोई बीमार पड़त है, कोई का समस्या है, कोई का समस्या है, तो पूछो ना सकी कि का हाल है। नहीं वैसे तो जब हमार लोग की समस्या है तो जैसे सोचा जाए जो बूढ़े पुरखा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके का हाल होत हुई है नी, वैसे का कहा जाए। नेपालगंज का तो हम लोग माने जाते हैं कि नेपालगंज बाकी क्षेत्र का गर्मी क्षेत्र के बहुत बड़े इशू के रूप में माना जाता है। और सखी तो का बताए आपके का हाल चाल है?
1: हाँ सखी बस हाल वही मेरे के हमरे भी है। अब का है कि गर्म के महीना में आई शायद तो घर से बाहर निकले मन ना होते, धूप में ही आए तो फिर है ना घाम के, अब घाम अब काम के वजह से तो निकले का पड़त है।
0: हाँ,
1: जो कोई
0: तो
1: अब जो कोई काम कर रहा है उसके लिए तो समस्या तो अब यही है कि काम के लिए तो निकले का पड़ी है। नहीं तो अब जो घर के गृहिणी लोग हैं उन लोग अगर घर में हैं तो चलो उनका कुछ तो राहत है, ये धूप से बचाव है, लेकिन फिर भी अब गर्म तो गर्म है, ये है गर्म वैसे भी लगत है।
0: तो यही गर्मी के
1: गर्म वैसे भी लगत है
0: तो यही गर्मी के जो मौसम है ना अभी। हाँ। गर्मी के मौसम

0: हमारे लोगन की गर्मी है, गर्मी मोड़ तो पिरात है नी, समस्या तो है, लेकिन हमारे दोनों सखी के नोक झोंक जो उनका हाथ नहीं है, छोटा छोटा झगड़ा बंद ना रही, कैसे अगर बंद हो जी तो और ज्यादा मूड़ पिराए लगी।
1: वही तो, अब कुछ मूड़ का हल्का करे खातिर, मतलब ये दर्द का हल्का करे खातिर तो अब थोड़ा बहुत मिर्च मसाला
0: कि मिर्च मसाला के साथ है ना, हाँ। कहे चाहिए थे कि जैसे गरम है,
1: गरम
0: वैसे
1: है।
0: तो अब छुट्टी के आज
1: और गरम अगर कोई गुस्सा दिला जाए तो और सर गरम हो जाते
0: हैं। ना तो हमका धमकी ना दिया जाए ना। कि गर्मी में और कोई गुस्सा दिलाए तो और मूड गरम हो जाते
1: हैं।
0: जब लोहा लोहा का काटत है बात तो जाना जाता है ना, कहा था लोहा लोहा का काटत है,
1: वही मतलब
0: अब आपके मूड गरम है
1: तो
0: गरम है अने, तब दोनों जना जब मिला जी तो मैं कोई के क्या डर रही कि भाई आपके और
1: चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, अब ज्यादा आगे बात बढ़ी यही मारे एक मतलब एक दूसरे के जब मूड गरम रहा थे ना तो चुप हो जाओ, लेकिन ठीक है सखी,
0: चुप हो जीवे तो फिर आप कहियो कि सखी बोलत नहीं
1: ना, अच्छा ठीक है, ये मूड जो गरम होते है ना उसका ठंडा करे के खातिर हम लोगन का करे चाहिए सखी।
0: अरे परेशान काहे हो, तो दवाई और उपाय तो बहुत उपाय, रहा था, हाँ। जहाँ चाह रहा था वहाँ रहा था तो उपाय बहुत है, लेकिन अब उपाय के साथ साथ का होते कि काम जैसे आप अपने सखी कह रहे हो कि काम करे तो जरूरी रहा था, काम रहा था, लेकिन हम लोगन का कुछ चीजें ऐसे राहत है जो हम लोगों का अपने आप का मौसम अनुसार ढाले पड़ा था, जैसे जाड़ चला गया जाड़ के उपाय कैसे बचा जाए, ऐसे गर्मी से कैसे बचा जाए कुछ उपाय है, और कपड़ा लत्ता कैसे पहना जाए उह के उपाय हम लोग इससे पहले पहले बतावा भी करा, जैसे शुरुआत हो रहा है गर्मी के, तो वैसे अभी में हम लोग का खावा पिया जाए जिससे हम लोगों का ये लू से गर्मी से बचा सकत है। और सबसे पहले तो हमारे लोगों के सबसे महत्वपूर्ण पानी, पानी की मात्रा कम ना हो शरीर में, लेकिन उह के साथ साथ अगर पानी कहूँ गवा गए पानी नहीं मिलत है, पानी की समस्या है, तो सबसे बढ़िया उपाय कि सखी आप तरबूज खावा जाए है नी, और तरबूज में पानी के मात्रा हद से
1: ज्यादा होते
0: हैं,
1: 90 की 92
0: पानी के पानी रहा है, तो पानी रहा तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी दिया जाए और तरबूज के व्याख्या करा जी, तरबूज से हम लोग का फायदा ई मौसम में है नी, गर्म के मौसम में, तो इसके व्याख्या के साथ ही हम दोनों सखी संपूर्ण सखी और हम श्रोता लोगन का कार्यक्रम में स्वागत करा जाते
1: हैं, स्वागत करा जाते हैं,
0: तो कार्यक्रम ध्यान से सुना जाए और प्यार से सुना जाए, और साथ ही इस कार्यक्रम का जब हम लोग अपने कृष्ण सार के पेज से पोस्ट होते, आप लाइव तो अभी सुने जाते हैं नी, लेकिन जब कृष्ण सार के ऐप से पोस्ट होते हैं उसके बाद हम लोग अपन व्यक्तिगत से भी शेयर करा जाते हैं, तो उमा भी आप लोग एक लाइक कमेंट करके आप लोगन के पास जौन जानकारी हुई गर्मी के मौसम में अथवा और कोई भी जानकारी देख चाहा जाते या उनके विषय वस्तु बताओ चाहा जाते तो कमेंट में भी बता सका जाता है, तो हम लोग के मैसेंजर में भी आप लोग हमका लोगन का समस्या या समाधान जो भी उपाय है आप लोगों के पास शेयर कर सका जाते हैं, कैसे थोड़ा थोड़ा शेयर आप लोगों के जोड़ के हम लोग एक कार्यक्रम के रूप में आप लोगों का फिर से प्रस्तुत करा जाए जो आपके पास सीमित रहा था उस सबके पास पहुँचे है नी। अच्छा हाँ, संकेत भी दे दिया है, संकेत के साथ साथ अभी आप लोगन का, लेकिन पहले तो हमारे सखी जैसे कहीं नहीं गर्म बहुत है और हमू कहा गर्म ज़्यादा है मूड पिरात है, तो ये संपूर्ण श्रोता जो शनिचर है आज छुट्टी है नी, जो मजबूरी में काम करा जाते हैं वो जगह, तो जहाँ भी आप लोग हो तो आपके रेडियो एफएम कोई नहीं बंद कर सकता है, और साथ ही घर में है तो अभी घाम बहुत है, घर में रही के गीत संगीत सुना जाए, हमारे दो जना के नोक झोंक भी सुनते रह जाए, आप लोगन के गर्मी थोड़ी देर खातिर दूर हो सकत है नी, तो कुछ सुनावा जाए कि यही मारे तो कहें हाँ करे बात नहीं कहे इनका, हाँ दोपहरिया है
2: तो
0: हाँ बात का लंबा ना करा जाए, बस दोपहर है शुरुआत करा गया है तो कुछ हम लोग अपने दिमाग का फ्रेश कर लिया जाए, 5 मिनट 5 मिनट तो ये गीत संगीत खत्म हो जाए सके, बस यही तो उलावक चाहित रहा कि वैसे कि काहे का चाहती, फिर चला जाए हम लोग व्यापारिक विश्राम के तरफ, फिर कार्यक्रम सुनते रहा जाए।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: अब का है ना कि
1: का है
0: मैं हमरा कहे मतलब कि जैसे कि आप तो बताए दिए हो तरबूज के बारे में, है ना?
1: अभी नाम लिया है, बतावा नहीं है।

0: कहाँ भटकती हो?
1: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
0: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर के आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर के आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
0: संपर्क नंबर है 98487916।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तीरे को संपूर्ण प्रीमियम फिरता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस जीवन को लागी।
4: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
5: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz कृष्ण सार जस तेज।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: कहा कि हमारे बात पूरा ना हुआ रहा है,
1: बात पूरा ना हो रहा है, लेकिन फिर आप
0: लेकिन
1: वापस कहूँ चली गई रही हो, तो हम चुप पे सहारा देखी तरह कि जब आवाज आवे तो फिर हम
0: तो बस वही
1: कुछ
0: बात
1: आवाज
0: है।
1: के जवाब दी।
0: तो ठीक है, अब आवाज भी आवा। हम ये सोचित रहे ना, अभी तरबूज के बारे में तो हम जैसे आप बताए है ना, लेकिन खाए के लोग तो खाए लेते हैं है ना, लेकिन अभी के फायदे का है ये जिसे आदमी ना जान पावत है का कुछ, कोई कोई और जो जानत है तो जानते हैं और जो ना जानत हैं, तो हमारे ख्याल से थोड़ा इके चर्चा करा जाए है ना, ताकि जो है और लोगन श्रोता साथी लोगन के मतलब वहाँ तक हम लोगन के ये बात पहुँचे और उन लोग भी फायदे के बारे में जाने कि तरबूज तो हम लोगन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदा है और कौन कौन चीज़ के लिए फायदा है ये भी तो जाने है ना सखी।
1: अरे फायदा करती सखी, वैसे तो पहले हम लोग सोचा जाए कि तरबूज एक फल हुए
0: हाँ
1: है नी,
0: फल हुए
1: और फल खाए का तिर का होते, एक तो पहले का होते कोई का ये पसंद रहा था कोई का नहीं पसंद रहा था, कोई का कौन फल पसंद है कोई का कौन फल पसंद है, और शुरुआत तो अब आम के भी है, लीची के भी है, इसे खीरा भी है,
0: हाँ
1: लेकिन अभी ज़्यादातर दिखाई पर चारों तरफ तरबूज बहुत देखात है, और तरबूज के उपजनी के साथ साथ तरबूज के फायदा इतना ज़्यादा है ई मौसम के खातिर, जो कि गर्मी मौसम में हम लोग सबसे पहले कहा जाते पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा होक चाहिए, पानी सकभर एकदम पिया जाए शरीर में, अगर कहूँ लू लग गया या गर्मी के तापक्रम के कारण से पानी की समस्या बहुत, तो हम लोग बीमार हो जाए थे, है नहीं कई चीजें हैं,
0: कमजोरी भी फील हो लगा
1: कमजोरी
0: थे,
1: फील हो
0: हाँ
1: जाते
0: एनर्जी
1: हैं।
0: ना लगा थे।
1: अब दूसरा उपाय है क्या, जैसे हम लोग ग्लूकोज पानी भी पिया जाते हैं, है नहीं, अब ग्लूकोज पानी पिया जाता है तो ग्लूकोज तो एक दवाई के रूप में होएगा, ग्लूकोज पानी पिया जाता है जिसके कमजोरी होएगा या डायरिया होएगा कुछ समस्या होएगा तो सलाइन पानी भी चढ़ावा जाता है, ग्लूकोज पानी चढ़ावा जाता है। तो ऐसे तरबूज का है कि तरबूज में हम लोग 90-92% कहा थे पानी मिला थे उमा, वो फल में पानी की मात्रा रहा थे, अब वो फल हम लोग जब सेवन करा जाते तो फल हम लोगों का लू से बचावत है, गर्मी से बचावत है, पानी की मात्रा भी देते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे लोगों के कहा ना जाते, अब सखी अब हमारे मुस्कान के साथ हंसी दे रही हैं कि त्वचा अथवा जो चेहरा रहा थे
0: ग्लोइंग आवत
1: उमा भी चमक देते,
0: चमक देते,
1: हाँ देखो
0: ग्लोइंग रहा
1: पहले
0: थे।
1: जानगे ग्लोइंग आवत है कह के।
0: अरे तो सखी अब हाँ बताओ ना, तो ये तो सब अब सबको ही कहाँ सी
1: अच्छा
0: आई,
1: ये तो मतलब आम बात है,
0: नहीं आम बात
1: आम
0: नहीं
1: बात
0: ये
1: नहीं है,
0: अच्छी बात
1: अगर
0: है,
1: पानी के समस्या
0: अच्छी
1: होते,
0: बात है का,
1: हाँ
0: वही कही थे कि अभी खुशी वाली बात
1: नहीं
0: है,
1: कोई
0: ये
1: ऐसा ऐसा
0: खुशी के बारे
1: पॉइंट
0: तो
1: हो थे
0: मुस्कान
1: सखी
0: ही
1: जो
0: करी ना।
1: बतावे खातिर
0: हाँ
1: कि जैसे सखी लोग का कोनो एक पॉइंट अगर उनका पसंद आए हुआ कोनो बढ़िया हुआ तो उके लिए भी वो तरबूज के सेवन करे
0: करी
1: लगी
0: हैं हाँ,
1: हाँ
0: और
1: नहीं।
0: खास करके चेहरा चमकदार रहे एक वजह से तो और लोग करी हैं।
1: हाँ तो पानी की अगर मात्रा कम होएगा तो देखो हम लोग के चेहरा मुरझा जाते हैं, चेहरा में कई प्रकार के जैसे चेहरा काला पड़े लागत है, वैसे तो इसे तो अंधोरी भी आवे लागत है, दाना छोटे छोटे आवे लागत हैं, ये कहे से सब गर्मी की एलर्जी से, गर्मी के तापक्रम आता है पसीना आता रहा थे कि इके तापक्रम की वजह से छालन में कई समस्या दिखाए लागत है, तो सबसे पहले हमारे लोगों के उपाय रहा थे कि तरबूज से हम लोग अपने तापक्रम का अथवा गर्मी के लू से बच सका जाते हैं,
0: बस सका
1: और
0: जाते हैं
1: साथ ही अपने शरीर का भरपूर मात्रा में एक तो एनर्जी भी रही ताजगी रही,
0: और
1: ऊपर से
0: ठंडा
1: हम
0: भी
1: लोग
0: रही
1: पानी के
0: शरीर,
1: मात्रा के
0: हाँ
1: भरपूर रहा जाए।
0: हाँ अब सके जैसे कि अब शरीर में पानी की कमी कैसे होते हैं, जैसे जो पसीना होते हैं ना, जो पसीना हम लोगों के शरीर के जो पानी जो है उस पसीना बन के ही निकल जाते हैं, तो
1: हाँ
0: इसके वजह से हम लोगों के शरीर में पानी की कमी भी
1: हाँ
0: एनर्जी
1: और
0: भी कम हो
1: पसीना
0: जाते हैं।
1: निकला भी अच्छी बात रहा था,
0: हाँ
1: शरीर के पसीना
0: तो
1: निकला जिसके कारण से हम लोगों का ताजगी भी महसूस होता है, जब पसीना निकला तो हल्का कहीं हवा लगा था तो कितना ठंडक महसूस होता
0: हाँ ठंडक
1: है
0: महसूस
1: नहीं।
0: होता है, लेकिन उसके साथ साथ पानी की कमी भी कमी की वजह से कमजोरी भी फील होने लगते बाद में, तो ये कमजोरी का जो है कम करे के खातिर तरबूज बहुत ही फायदेमंद जो है रामबाण
1: दवाई के रूप
0: दवाई
1: में
0: के रूप
1: रहा
0: में
1: था,
0: माना जाता है।
1: हाँ लेकिन अभी माँ खाली, अब जैसे मान लो कहा नहीं गा, हम लोग पहले भी कहा जाते कोई चीज़ अधिक सेवन करे से नुकसान भी हो जाता है, तो एक ही जैसे आप लोग खाना खावा जाते तो हम लोग प्रयोग करा जाते ना कि खाना के साथ है सलाद के प्रयोग ज़्यादा करे चाहिए, तो जैसे ही मौसम में है तो खीरा भी उपलब्ध है, तरबूज है ये है गाजर है ये है, तो ये सब चीज़ें के आप खाना के साथ है भी प्रयोग कर सका जाते है कि खाना के मात्रा में खाना के मात्रा कम रहा है और सलाद की मात्रा ज़्यादा रहा है,
0: ज्यादा रहे
1: जो कि हम लोग खाना के साथ साथ पहले सलाद खाए के तब खाना खावा जाए तो ये पाचन शक्ति में जल्दी सहायक करत है, खाना भी जल्दी पच जाते है और जो खाना के तासीर रात है, जैसे पेट में कब्ज करब, गैस्ट्रिक करब, ये समस्या का सलाद बराबर कर देते हैं, पेट के समस्या का भी दूर करते हैं।
0: और सखी जैसे कि अब हर लोग अपने मोटापे से, कोई कोई जो मोटे रहते हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं ना, तो ये जो है तरबूज खाए से क्या होते, वजन भी कम होते है ना, मोटापा भी कम होते।
1: हाँ बस मोटापा कम होता कहे से, जब पहले कहा गया है तला भुना मसाला तेल जब कम खावा जाए तो शरीर के लिए फायदाजनक होते।
0: हाँ।
1: तो जैसे हम लोग बाहरी चीज ज्यादा खावा जाता है, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, मोमो है,
0: मैदा
1: सब
0: वाला
1: चीजें मैदा से बनत है, और मैदा हम लोगों के सेहत के खातिर, पाचन शक्ति के खातिर सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में माना जाता है। कहे से जितने पतला आटा खाते पिसान राहत है उतने वो आंत में चपकत है। जैसे हम लोग जो रोटी भी खावा जाते हैं, अगर चोकर युक्त जैसे चोकरा उमा जैसे मोटा आटा रहा था, जितने मोटा आटा के हम लोग रोटी बनाए खावा जाए हम लोगों के शरीर के खातिर उतने बढ़िया रहा थे। लेकिन हम लोगों के उल्टा करा जाता है, जितने का चाल चाल के मैदा तना महीन नहीं कह लीन जाते तब तक हम लोगों के रोटी नहीं खावा जाता। रोटी मुलायम एकदम नरम रोटी खाए पसंद करा जाते हैं। लेकिन जो पहले के तना कुटाए पिसाई के जो भूसी वाला जो आटा रहा था, जैसे वो आटा का जैसे रोटी बनाए खावा जाते तो उस शरीर के खातिर एकदम फायदाजनक करा था। पेट भी साफ होते और शरीर में जो शरीर के फैट रहा था वो सब चीज़ों से वो बचावत है, कम करत है। तो ये तो हमारे लोगों के खाना के डाइट के रूप में हो गया। लेकिन तरबूज के सेवन का है कि जैसे आप सवेरे संझा दोपहरे आप कोनो चीज ना खाए के खाली तरबूज खाओ जी तो वो नुकसान दे।
0: हाँ, खाना के तरीके से एक अगर प्रयोग किया जाए तो नुकसान करिए।
1: हाँ,
0: एक टाइम मान लिया जाए, मतलब
1: ज्यादा से ज्यादा खाना के साथ प्रयोग करा जाए तो ये फायदाजनक रहा था। जैसे आप बाहर निकला गया, आपका दोपहर में भूख लगा है कुछ है, तो इस समय में आते गर्मी के समय में अगर आप बाहर के नाश्ता खावा जाए तो नुकसानदेह हो सकता है। जैसे चाउमीन भवा चाउचो भवा ये सब चीजें और नुकसान करते कि तासीर गर्म हो, पेट में समस्या हो, गैस्ट्रिक बना सकते है, उल्टी भी हो सकते है नी, और पाचन शक्ति भी नहीं पचा सकते है। कैसे तापक्रम इतना ज्यादा रहा है, ऊपर से वो चीज जो हम लोग मैदाजनक खावा जाता तीखा वो सब चीजें और नुकसान कर सकते है। तो ऐसे रूप में हम लोग सलाद के अथवा फल के रूप में तरबूज के प्रयोग करा जाए, जो कि हम लोग के लू से भी बचाई, घाम से भी बचाई, हम लोग का तरावट भी दी, साथ ही पानी की मात्रा भी दी। तो तरबूज ही हमारे बहुत ही फायदाजनक एक रामबाण दवाई माना जाता है।
0: तो सखी,
1: हाँ सखी,
0: तो चर्चा तो चर्चा तो होते रही है। अब चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ, इसके बाद 2 बजे के टाइम चेक के बाद आवाज आई है गीत के साथ में।
1: ठीक है, आप अते उसे हम करना कहा जाए, और टाइम चेक के बाद तो हम लोग अबे करा जी। लेकिन अगर बीच में सखी का हमरे याद ना हो तो हमका ना रोकती है नी, चर्चा तो हुई थी,
0: याद तो रहा है, लेकिन हम सोचें कि अभी बात पूरा हो जाए, बीच में काटना भी नहीं ठीक रहा था ना।
1: हाँ।
0: अब हमरे सखी भुलाए जी है अगर,
1: लेकिन आप तो कैची हाथ में नहीं लिए रहे हो, कैसे काट
0: नहीं, बात बात से रोकना ना अच्छा होता है ना, बीच में रोक देवे।
1: अच्छा,
0: अब अच्छा अच्छा बात अगर होते ना, तो
1: अब देखो हम आपका बात में फंसा ही लिया।
0: अच्छा,
1: आप तो कह रहे हो चलो ठीक है, ठीक है, चलो टाइम चेक के बाद फिर कार्यक्रम घर आना, सुनते रह जाए।
0: हाँ, सुनते रह जाए।
2: नेपालगंज का लागि सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थकेयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डीएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेशन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनु भएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081530220 र 98145689। 081-535-220 र 98-41-586-979।

0: मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाते है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037
5: हेलो
6: हेलो बहिनी सन्चै छौ
5: हजुर सन्चै छु हजुरलाई कस्तो छ
6: एकदम ठीक छ बहिनी तिम्रो लागि र भान्जीको लागि केही सामान पठाएको छु हुलाकमा लिन जाऊ है ट्र्याकिङ नम्बर म मेसेज गर्छु
5: आहा हस हस अनि हुलाकमा पो जानु
6: हो नि हुलाकमा जाऊ न
5: हुलाकमा त चिठी पत्र मात्रै आउँछ हैन र
6: हैट तिमी पनि कुन जमानाको कुरा गरिरहेका छौ देशमा बसेर आफ्नो देशको हुलाकको सेवा सुविधा के छन् थाहा नपाएको
5: लौ न त विदेशबाटै भए पनि थाहा पाऊ हुलाकको के रहेछन् सुविधाहरू
6: ल सुन विदेशबाट नेपालमा र नेपालबाट विदेशमा उपहारहरू चिठी पत्रहरू पठाउनु पर्यो भने नेपालको हुलाक सेवा जस्तो विश्वासिलो भरपर्दो र सस्तो अरू कुनै पनि छैन कुरा बुझ्यौ
5: ए सहरमा मात्र होला नि
6: कहाँ हुनु अहिले त नेपालका सबै जिल्ला अनि 753 स्थानीय तहहरूमा हुलाक कार्यालयबाट सेवा चलेको छ नि
5: थ्याङ्क यू मेरो दाइ आज राम्रो कुरा थाहा भयो
7: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथन हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: के

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: अरे
1: बड़े प्यार से बुलाया है, बात का है। हाँ सखी बोलो, और मूड तो ठीक होएगा, होएगी संगीत सुन
0: हाँ,
1: के, और
0: अब
1: सुनता
0: आप
1: है आप लोगों
0: इतना
1: का भी
0: अच्छा
1: तो
0: चीज़
1: ठीक होएगा।
0: बताए
1: हुई
0: हो, इतना अच्छा चीज़ बताए हो ना, तरबूज के बारे में बताए हो। अब दिमाग जो है गरम रहबे कीस रहा है, अब ठंडा
1: हाँ
0: हुआ है जाए के।
1: नाम इससे ठंडा होएगा,
0: हाँ
1: आप सोचो खाइयो
0: अब
1: तो कत्ता ठंडा हो
0: कत्ता
1: जी।
0: ठंडा हुई, अगर भूख लगा हुए तरबूज
1: हाँ
0: खाई लो तो खाना के जरूरत ही नहीं रही है,
1: हाँ
0: कहे कि पेट
1: सके,
0: भर जाते।
1: लेकिन यही बात है, जैसे
0: हाँ
1: पेट भर के खाना जब खाए लिया जाए उसके
0: हाँ
1: बाद तुरंत तरबूज खाए भी ना चाहिए, काहे
0: हाँ
1: से तब नुकसान कर सकत है।
0: हाँ अगर भूख लगा है खाली पेट हुआ जाते है ना खाना, जैसे
1: हाँ
0: नहीं नहीं खाए हो खाली पेट हुआ जाते, तो तरबूज अगर खाए लो तो पेट भर जाते हैं मगर।
1: हाँ वो तो बात है। अब वो मैं एक और सलाह बताई थे
0: हाँ
1: कि खाली पेट जैसे सवेरे कहा नहीं है बासी
0: हाँ
1: मुँह, तो
0: हाँ
1: बासी मुँह तरबूज न खाए के चाहिए।
0: अच्छा
1: हाँ वो नुकसानदेह हो सकत है।
0: ए हमका
1: तो
0: नहीं
1: ई के
0: पता रहा।
1: मारे कि खाना के डाइट के साथ है तरबूज का हम लोग उस समय में प्रयोग कर सका जाता है। जैसे
0: अच्छा
1: सवेरे पानी पिया जाता है और जो आप अपन डाइट जो बनावा का है वो खाई सका जाता है, लेकिन तो जैसे कहा जाता है पानी पिए के बाद खाली पेट में तरबूज खावा जाए तो नुकसानदेह हो सकत
0: अच्छा
1: है।
0: मतलब आपके कहे मतलब है कि सवेरे मतलब खाली पेट इका न
1: हाँ
0: खाए के चाहिए,
1: हाँ और वो
0: दोपहरिया में चाहे जोन
1: हाँ
0: टाइम खाए
1: दोपहरे
0: लो।
1: खावागा खाना खावागा, लेकिन जब खाना आदमी भर पेट खाए, रात नहीं है कि बहुत पेट भरा है,
0: हाँ
1: उसके बाद तुरंत ही खाना के साथ है उसके बाद तरबूज न खाए के चाहिए, तब
0: अच्छा
1: हूँ वो
0: कुछ
1: नुकसान
0: देर
1: हो
0: के बाद
1: सकत
0: खाए
1: है।
0: के चाहिए।
1: हाँ जिससे खाना आपके हल्का, वही तो कह रहे सखी, जैसे आप खाना के साथ है सलाद के साथ है प्रयोग करके खावा जाता है वो और बढ़िया बात है। और जैसे खाना खाए के बाद कहा ना दोपहर 1-2 बजे 3 बजे फिर आदमी नाश्ता के प्रयोग करत है खात है, तो नाश्ता के समय में भी तरबूज के सेवन बढ़िया से कर सकत है, पेट
0: हाँ
1: भी भर जाता है और तरावट भी राहत है, और पानी की मात्रा तो है ये है, वैसे भी 12 और 4 के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी के तासीर भी राहत है, जिसके कारण से हम लोग का तरबूज एकदम फायदेजनक हो सकत
0: हो
1: है।
0: सकते हैं।
1: और इके जो 52% 92% कहा जाता है कि प्रतिशत में पानी के मात्रा रहा है, तब सोचा जाए कि 100% में 92% में पानी है ये है, अब पानी के साथ साथ ही में बहुत से विटामिन भी रहा है नहीं,
0: हाँ
1: और विटामिन हम लोग के शरीर का चाहे वाले सब विटामिन चाहते हैं, जिसके कारण से हम लोग के शरीर का जो भी चाहत है जैसे भवा कि कैल्शियम भवा जिंक भवा फाइबर भवा और विटामिन ए भवा विटामिन सी भवा है नहीं, और
0: हाँ
1: अपने शरीर का हम लोगों का दुरुस्त रखे खातिर हाइड्रेट कहके जो विटामिन रहा थे ये हम लोग के शरीर का ये पोषक तत्व देते हैं, और साथ ही साथ शरीर का जो हम लोग के शरीर में जो फैट रहा थे जिसका हम लोग चर्बी कहा जाता
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: उस चर्बी का नियंत्रण में करे खातिर भी बहुत मदद करत है।
0: हाँ सही बात है, आप बहुत अच्छा चीज़ बताओगा, और हमारे साथी लोग भी सुनी हुई हैं, अब फायदे के भी बारे में पता चल गया हुई है। क्या है कि अब जिसे देखा जाए तरबूज लोग खात रहे, लेकिन अभी के फायदे के बारे में नहीं पता रहा है, खात तो चले जा रहे, लाओ भूख लगा खाई ली, लेकिन जब ये फायदा जब होता है फायदे के बारे में जब जान गए हैं, तब
1: हाँ
0: तो इका एक दवाई के रूप में तरीके से खाई है भी है ना, कि
1: हाँ
0: हमका
1: दवाई के रूप
0: कितना
1: में नहीं,
0: फायदा
1: जैसे
0: होते।
1: कहा जाता है ना सखी, कोई भी चीज़ हम लोग बहुत से चीज़ें प्रयोग करा जाते हैं सेवन करा जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा चीज़ें होते हैं कि सेवन तो करा जाता है लेकिन उनका सेवन करे का तरीका नहीं बता रहा था। जैसे
0: तरीका
1: हम
0: नहीं
1: लोग
0: पता रहा
1: सवेरे
0: थे।
1: कहा ना थे योगा करा जाए शरीर के खातिर फायदाजनक रहा थे,
0: हाँ
1: अब योगा के भी अगर हम लोग का तरीका नहीं पता रहा था तो योगा हम लोगों का कोई शरीर ऐसा हम लोग लचकावागा कि वो दर्द उत्पन्न हो जाता है या नुकसान हो जाता है, फिर हम लोग के वो दिमाग में सोच में का हो जाते हैं कि योगा के चक्कर में हमारे लोग के ई पिराएला। तो जब हम लोगों का कोई भी नियम तरीका जो चीज़ के ज्ञान नहीं रहा थे और उसके बारे में कैसे प्रयोग करा जाए तो कैसे फायदा हो, तो हर चीज़ में ये बहुत जरूरी रहा थे कि थोड़ा बहुत उसके जानकारी रखे के चाहिए,
0: रखे
1: और
0: चाहिए।
1: स्वाद तो है ये है, इस स्वाद के खातिर हम लोग अपने शरीर का कत्ता बीमारी में लावा जाते हैं, स्वाद के खातिर अपन शरीर का स्वाद अनुसार लेके फायदा में भी ले जावा सका जाते हैं, लेकिन इस स्वाद के चक्कर में हम लोग जो न खाए के चाहिए वो चीज़ खा लीन जाते
0: वो
1: है
0: चीज
1: नहीं,
0: खा लिया जाते
1: तो जी के
0: सही
1: कारण
0: बात
1: से
0: है।
1: मन मन का कंट्रोल करे मन का स्थिर रखे खातिर भी बहुत बड़ा शक्ति चाहत है।
0: हाँ अच्छा सखी एक चीज़ हमका याद आवा, जैसे कि आप जो बताया हो कि जो ना खाए चाहिए वो भी खावा जाते हैं, जैसे गर्मी के महीना में यह कहा जब जैसे शाम होते है ना,
1: हाँ
0: हम अपन आप इस तरह न देखो का, जैसे लगा था कि अब सब कुछ हमरे न है,
1: नहीं
0: मतलब
1: जान
0: हम
1: गए ना
0: बताए
1: आप
0: थे।
1: शाम
0: हाँ
1: होते। हाँ फिर
0: हम अपने पसंद ना बताए थे, मतलब ये बताए थे कि रूल्स बहुत लोगन के मन में ये ख्याल आवते, ये जैसे संजा होते चलो तनी पानी पूरी खावा जाए,
1: ये अच्छा
0: हाँ
1: ये आज की
0: चाट
1: सोच
0: खावा जाए,
1: हमारे सखी जो कहा जाता रही कि चलो आइसक्रीम
0: चटपटा
1: खावा
0: खावा
1: जाए।
0: जाए है ना, मतलब जैसे कि अब देखो ये नुकसान चीज है
1: हाँ
0: फिर भी खावा जाए, और बाद में वही जो है पेट के लिए कत्ता भी कत्ता नुकसान करत है। ई ना सोचिए अगर उनके जगह पे यहाँ यही जो है तरबूज हुआ, खीरा हुआ, है ना, यही सलाद बना के खावा जाए तो सेहत के लिए अच्छा भी रही।
1: हाँ।
0: और लेकिन अब लोग जो है स्वाद के ऊपर जाते हैं, चटनी चाटे
1: स्वाद ऐसा चीज़ होता है कि स्वाद कहा तो गा कि हम लोगों का स्थिर कंट्रोल नहीं कर पावा जाता है, लेकिन वही स्वाद बाद में का होते है कि ऐसा चीज़ समस्या होते है कि उस स्वाद के चक्कर में जब हम लोग उपचार करे के रूप में डॉक्टर के पास जावा जाते है तो हमारे लोगों के सारा स्वाद बंद कर देते हैं। सादा उबला चीज, सादा खाना खावा जाए, तेल ना खावा जाए, मसाला ना खावा जाए, ई ना खावा जाए, उनका जब शरीर का अगर खावा भीगा तो तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाता है।
0: हाँ हाँ, खाएंगे मन है तो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा खावा जाए, लेकिन अब रोज दिनचर्या में नहीं है। हाँ, कि नहीं सखी,
1: दिनचर्या में और मौसम अनुसार, जैसे मौसम, अभी मौसम तो बहुत गर्म है, तापक्रम ज़्यादा है तो पेट के जो हम लोगों के अंदर पाचन शक्ति है वो भी का होते कि तापक्रम के कारण से खाना पचाने में का बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। जो तीखा के एक तो वैसे पेट में जलन रहा थे, है नहीं, गर्म तापक्रम ज़्यादा रहा थे, अब वो तीखा खट्टा जो हम लोग खावा जाते हैं उससे और हम लोगों का खट्टी डकार, खाना ना पचप, अथवा हम लोगों का कहा नहीं जाता, अथवा हम लोगों का कहा नहीं जाता दस्त।

0: पहले तो सबसे पहले जब भी हम लोग धूप से आवाज आते तो कम से कम 3-5 मिनट तक तो अपने आप का स्थिर बैठा जाए, तुरंत भी आप कपड़ा नहीं बदला जाए, पसीना घाला, जैसे पसीना निकाला गया वो पंखा डायरेक्ट आपके शरीर में जो हवा लागत है वो भी नुकसानदेह होते हैं। ये मारे पहले 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक आप स्थिर बैठा जाए, उसके बाद आप कपड़ा बदल सका जाते हैं, और फिर हाथ पैर अथवा जो नहावा जाते हैं तुरंत घाम से आए के तुरंत नहावा भी न जाए। बहुत से ये समस्या दिखा पड़त है कि कोई बेहोश हो जाते है, कोई के का समस्या हो जाते है, तो ये तुरंत गर्मी से आवागा तुरंत नहावागा तो गर्म और ठंड से हम लोग के शरीर
1: में
0: ब्लॉक हो जाते हैं, कहा नहीं जाम हो जाते हैं, जिसके कारण से समस्या होते है। तो गर्मी से जब भी आवा जाए तुरंत, चाहे फल फूल हो या खाना हो, कभी ना खावा जाए। आपका 5-10 मिनट के बाद है, जब आपका सांस पर श्वास लागे थोड़ा जो आवाज आता है तब कत्ता गर्म से हम्प आ जाते है, कत्ता गर्म है, कत्ता गर्म है। जब हाँ। वो कूल हो जावा जाए, स्थिर हो जावा जाए, तब कोई चीज के काम करा जाए अथवा प्रयोग करा जाए खान पीन में। हर चीज ही नुकसानदेह होता
1: है। तो सखी ये तो सच में यहाँ बहुत जरूरी वाला बात रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोगन में ये जानकारी होना भी जरूरी है। और जिसे कुछ लोग तो पता भी हुई है ना, अब सब कात ना है, 5 उंगली बराबर ना होते
0: हाँ, वो तो
1: कुछ लोगन का यहाँ तो मालूम है, कुछ लोगन का ना ही पता है, तुरंत आए बहुत गर्मी लगत है, लाओ पानी लाओ पी, जैसे अगर फ्रिज है तो फ्रिज से पानी निकाल के पी लीन आए, आओ के बाद अगर ना ही है तो फिर नल के पानी या फिर जो है फिल्टर के पानी, कोई भी पानी पीन तुरंत आई के, तो अपने आप को यहाँ नुकसान पहुँचावा जाते, ना कि फायदा ना होते बल्कि नुकसान ही पहुँचते। तो आप लोग जो हमरे सखी बताइन है बहुत अच्छा उपाय, ये आप उपाय करा जाए।
0: खाली सखी नहीं बताइन है, आप तो पहले से कहते रहे ना सखी बतावा जाए अब तरबूज से,
1: तो है
0: अब हमरे सखी तो तरबूज उनके खाए के मने लग गवा है नहीं। और वैसे भी आजकल हम लोगों के जैसे तरबूज खावा भी जाए ना सखी, तो पहले तो हम लोग जानकारी लेने जाते जो केमिकल युक्त जो इंजेक्शन से जो पकावा जाते केमिकल युक्त तरबूज होते है वो भी हम लोगों का नुकसानदेह होते है।
1: हाँ।
0: पता ही करे पड़ा कि नजदीक कहीं के उपजनी भवा है कि ऑर्गेनिक है कि का है, ऐसे चीजें। और तरबूज काटा जाए तो ज्यादा देर तक काट के उसका रखा भी ना जाते है।
1: हाँ।
0: जो काटा जाए उसका हम लोग खाए के खत्म करे जरूरी रहा
1: है। और पता है सखी, जैसे कि तरबूज अगर लावा गया है ना, तो वो तरबूज के यहाँ कुछ देर के लिए पानी में रख दिया जाए, पानी में रखे के बाद जो है इसका काटा जाए कि जो भी वो गर्माहट होते है ना उस चीज।
0: हाँ सखी, ये भी बहुत बढ़िया बात आप बतावागा कि तरबूज का तुरंत लाए के तुरंत न खाए के चाहिए। जैसे आप कहीं से भी बाजार से लावागा तो दुकान में भी घामे में रखा है तो, या फिर तूर के तुरंत लावागा है तो तुरंत उसके सेवन न करे के चाहिए। थोड़ी देर हम लोग का पानी में डाले के चाहिए कि हंसू के जो तापक्रम होते जो गर्माहट रहा थे बाफ रहा थे वो हट जाए, उसके बाद हम लोग का काट के फ्रेश तरबूज खाए सका जाए।
1: तो सखी अब चला जाते हैं व्यापारिक विश्राम को।
0: ठीक है सखी, चला जाए व्यापारिक विश्राम के बाद। उसके बाद तो हम खुशी है ये हन कि हमारे श्रोताल आप लोग भी जाना जाते हैं कि व्यापारिक विश्राम के बाद गीत संगीत सुनते हैं हम लोग कार्यक्रम में, फिर वापस आवा जाए।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौं पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: के तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाई आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
4: दैनिक ₹197 रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
6: सुन्नु न, यो हाम्रो बिहे पछिको पहिलो यात्रा हो सिर्फ हामी दुईजनाका लागि।
7: हो त, हात समातेर हिँड्दा संसार अझ सुन्दर लाग्छ। कतै विशेष प्याकेजमा घुम्न जान पाए झन् कति राम्रो हुन्थ्यो। कहाँ होला र त्यस्तो सुविधा।

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
2: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
3: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कह सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
2: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
3: जानकारी रहक चाहिए। कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
5: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
4: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
5: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
4: कस्तो खबर?
5: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
4: ए, साँच्चै?
5: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
4: ए, त्यो त झन् राम्रो
5: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी MBBS, MD KU, IVF स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
4: वा, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
5: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
4: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
5: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
4: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर BP चोक नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
5: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: Telefonia. Extreme energy drink.
1: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98583-697 और 98014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै सहर कोहलपुरमा टिभीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टिभीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
1: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
4: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
1: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
4: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू, हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
1: अनकल सेवाहरू,
4: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
6: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
7: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ कर यहाँ रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10 बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
0: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
9: नेपालगञ्जको बीपी चोकमा अवस्थित जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीवीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
0: यदि तपाई आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
9: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
10: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।

0: सखी
1: हाँ सखी,
0: अब हम लोग विज्ञापनों गीत संगीत के सुनते जो हम लोग आवा गया है। अब गर्मी के तापक्रम तो अभी नहीं घटा है, लेकिन सखी लोग से लेकिन सखी लोगों से हम लोग के आस ये है कि जो गीत संगीत सुनागा और जो तरबूज के बारे में जो व्याख्या सुनागा है, फायदा सुनागा है, तो जरूर कुछ गर्मी तो आप लोगों के सोच के भी कम भवा हुई। कहा ना जाते कि जत्ते सोचा जे उतने चिंता बढ़ी, यही मारे सोचा था कि गर्मी नहीं है। जैसे हमारे सखी नाम सुनते कही दिन कि हाँ बहुत ठंडा ठंडा मुझे तरबूज खाए के चाहिए और हम लोग के गर्मी के तरावट देते और गर्मी भगाए देते। तो ऐसे आप लोग सोचा जाए और अपने आप का मजबूत बनावा जाए और घर परिवार के रक्षा करा जाए और घर परिवार में सकभर सादा खाना और जैसे जोन जोन पानी के मात्रा ऐसे फलन के सेवा करा सेवन करा जाए और सबके परिवार के भी सेवा करा जाए। कहे से जो घर के जो गृहिणी रहते जैसे कि उनका घर के अपन रसोई घर के जत्ते रक्षा करा जी वे घर परिवार सुख में रहे। तो सखी अब हम लोग के विदा लेख समय आएगा वह है नहीं, और आप लोग से विदा लेख समय से पहले फिर से कहा जाता है कि तरबूज के बारे में जो आज जानकारी दिया गया, ये तरबूज आप लोगन के सेवन करा जाए और कस लाग कैसा आप लोगन का महसूस भवा कत्ता फायदा है इसके बारे में आप लोग भी लिख के जरूर हम लोग का कमेंट करा जाए और साथ ही मैसेज में भी आप लोग लिख के पठाई सका जाता है। ऐसे गर्मी से और भी बचे वाला कुछ चीज़ें हैं तो जरूर हम का लोगन का खबर करा जी, हम लोग वो बारे में फिर से आप लोगन के समक्ष कार्यक्रम में प्रस्तुत करा जी, आप लोगों का व्याख्या करके भी उसके बारे में बतावा जाए। तो सखी चला जाए।
1: हाँ सखी बिल्कुल,
0: आप तो घाय लगे का हो
1: नाई आऊ है नहीं है
0: एक तो तरावट अत्ता
1: अभी नहीं कहा तो कि तरबूज खवाए दिए हो बातें से
0: तो और तो आपका ताजगी तो आवे चाहिए, मतलब अभी तो हम ताजगी आई ताजगी आई कही थे
1: हमारा सारा चिंता का चिंता कुछ नहीं है।
0: हाँ अब बताए दो अब जाए टाइम होगा आप चिंता भी बताए दो,
1: कार्यक्रम के अंत में पहुँच चुके हैं इनका तो जल्दी से नमस्ते करके जावा जाए
0: ये बात है। हाँ। मतलब भागे खतिर चिंता है,
1: भागे खतिर नहीं टाइम हम लोगों ने टाइम
0: टाइम भागत है ये के मारे चिंता है। वैसे भी हमारे सखी डबल डबल ये ड्यूटी कर रहे थे तो प्रावधिक में भी हैं तो इनका समय के ज्यादा इनका अभाव है, भागे कोशिश कर रहे थे और हम चाहे थे कि अभी न भागा जाए लेकिन का करा जाए श्रोता हम लोग समय से बंधे हन ये हमारे आप लोग के समझ हम लोग पहले जानकारी दिन करा 3 बजे तक साथे रह जाए तो हम लोग 3 बजे तक साथ रहेगा और हमारे लोगों के कार्यक्रम के प्रतिक्रिया जरूर आप लोग हम लोग लाइक कमेंट करके बतावा जाए और साथ ही मैसेंजर में भी कोई भी जानकारी तो जरूर बतावा जाए। तो अगले हफ्ता नया विषय वस्तु के साथ फिर हम लोग आप लोग के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ जाए शनिचर के 1 बजे से 3 बजे तक। तो आज खातिर बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है, कार्यक्रम सुनागा और सुने के बाद उसका जरूर मनन करा जाए और साथ ही हमारे लोगों के साथ हमेशा ऐसे देते रहा जाए। तो कार्यक्रम घर के नुस्खा के तरफ से
1: घर अंगना के तरफ से अरे चलो कोई बात नहीं है घर अंगना में
0: क्या करा जाए तो जो पुराना आदत है वो जल्दी छूटे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यही हमारे बड़े दिन के बाद याद आएगा वह है नी घर के नुस्खा याद आएगा वो भी आप लोग जाना जाते हैं कार्यक्रम भी पहले चलत रहा
1: है तो सोचो तो
0: हाँ नुस्खे हो लेकिन थोड़ा बहुत ही हम लोग का थोड़ा थोड़ा बदला गया है, कई भी चीज में मिलावट कर दिया गया है। तो यही कहते हैं आप लोग से विदा लिया जाता है तो रेडियो किस सारे में हमेशा सुनते रहा जी और ऐसे हम लोग का साथ देते रहा जी, कहते नमस्कार
1: नमस्कार
0: राम राम सुप्रीम।

0: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
1: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कैके कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
0: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
1: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाते है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्यक्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848206697, 9858236697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: Back to back. Back to back.
4: In this song on
3: Stay tuned.

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यड्डे मुस्तो डोरोटा जेरो त पुरवा
4: उहट हेर बुढिया बर्खाक समय थेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खोजती सपुआ फे आइसक्था
3: ओहो हो निका ठक्क समझनु घरक आन्जा पाजा झफास फे बाहर से कत्रा कत्रा हिलबा काट पना रह
4: हाँ असी करी हर बुढ़िया ओसिन हो कलशे काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पकाक बासी खाई दूसरा असल परिवार मने मिलकर सर सफाई करबी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी तो नहीं हुई
3: हुई था हो बुढ़वा असिन डाला मदर ध्यान घास फोहर झफास भी था उमा सांप नुख का बैठल रह सकता ना
4: वह और से टक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू ओ मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ढंग ढंग घास काटी कालिक लानल काटे पे घर से टनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुह कर फे सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना मेर का चबट डार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप अना ता ओष्टह कम हो जाय
3: काल शनिश्चर फे हो बिहान का फुर्सत फे बा
5: साप बर्खा छाकक समय मा सुक्खा ठामा बैठा मन परै छ इ मौसम मा आपन बस्यारा मा पानी पैठना पिला कोर्से सुक्खा ठाउ का खोजी मा ओकरा बाहेर निस्कठ
6: मुस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम मा फे साप मानव बस्ती लघ आइ सकथ
7: विश्वास लगना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लघक उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकथा
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
9: अको अनार खाउला आमा सँग जाउला इनारको पानी झिकेर ईश्वरलाई पुजाउला उखु ताछी चुसौला
10: हरेक अभिभावकको सपना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन् सुरक्षित वातावरणमा सिकुन् र उज्जवल भविष्य निर्माण गरून्
11: त्यही सपना साकार पार्दै आएको छ नेपालगञ्ज 18 बाँकेमा अवस्थित एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था स्प्रिङडेल एकाडेमीले
10: आधुनिक प्रविधि मैत्री कक्षा अनुभवी शिक्षक स्मार्ट सिकाइ वातावरण विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला अतिरिक्त क्रियाकलाप र अनुशासित शैक्षिक संस्कार स्प्रिङडेल एकाडेमीको विशेषता हो
11: ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डले विद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणित गरिसकेको छ यहाँ पढाइसँगै व्यवहारिक ज्ञान र आत्मविश्वास पनि सिक्न पाइन्छ
10: नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 विज्ञान व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा भर्ना खुला गरिएको छ
11: सिट सीमित भएकाले आजै आफ्नो भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस् गुणस्तरीय शिक्षा सुरक्षित वातावरण र उज्जवल भविष्यको भरोसा स्प्रिङडेल एकाडेमी
10: ठेगाना नेपालगञ्ज 18 बाँके सम्पर्क फोन नम्बर 9858 29733

0: आज यहाँ कहाँ भटकत हो?
1: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
0: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेयर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेयर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
0: संपर्क नंबर है 9848827916।
2: ए रुको रुको रुको
3: के भयो किन कराएको यस्तो
2: दाई? यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
4: के एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
3: हो र?
2: हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
5: ओहो, आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
6: नेपालगंज 12 मुक्तिपुरमा रहेको युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीले नेपालगंजको शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउँदै आएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न गरिएको निरन्तर प्रयासकै परिणाम स्वरूप विद्यालयले स्थापना कालदेखि नै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको छ। यहाँ सुविधा सम्पन्न संरचना र आवश्यकताका सबै कुराहरू सहज उपलब्ध हुने भएकोले विद्यार्थीहरूको पनि पहिलो रोजाई बनेको छ। विद्यालयले शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउँदै आएको छ। 25 वर्षको सफल यात्रासँगै युनाइटेड एजुकेशनल एकाडेमी भविष्यमा अझ उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता सहित अघि बढिरहेको छ। तपाईँका बालबालिकाहरूको लागि उत्कृष्ट विद्यालय खोज्दै हुनुहुन्छ भने शैक्षिक सत्र 2083का लागि नर्सरीदेखि कक्षा 9 भर्ना खुलिसकेको छ। सिट सीमित छन्, आजै निवेदन दिनुहोस्। शिक्षा, संस्कार र सफलताको पर्याय युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमी, नेपालगंज 12 मुक्तिपुर बाँके। प्रधानाध्यापक जीवराज भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 9580 32138।

0: से साँप काटरला से का करना टा कहीं का एकदम महत्वपूर्ण वही मा कर परना का होटा कहीं का उ बात उ संदेश बुझाइना कोशिश कर लबा उस तरह के रेडियो कार्यक्रम बा छोटी संदेश और रेडियो कार्यक्रम मुलुक भर का 41 ठो रेडियो एफएम से प्रसारण हुई न करट उसे ही का हमरा सामाजिक संजाल से फिर सक्कू सामाजिक संदेश आना सामाजिक संजाल से फिर अस्था फेसबुक में से यूट्यूब में से इंस्टाग्राम में से फिर ई संदेश पुगाई सेक भी कले से विशेष कई खा युवा हुकरा जे सामाजिक संजाल का प्रयोग करट वहाँ हुकरा जागरूक हुई ही कहना धारणा हो उस तेह का पोस्टर बा ओ पोस्टर फिर दुनू ओर प्रिंट करगिल बा एक ओर हमरा रोकथाम का संदेश देला बाटी कले से दोसर ओर उपचार का संदेश देले बाटी ई सक्कू पाँचठो भाषा में नेपाली मा पलि बा उ बाहेक मैथिली भोजपुरी अवधि हो पश्चिमा ठारू भाषा में बा अब मैं लास्ट में फिर एक चो समझाई चाहतु हमार वेबसाइट www.sanakebitenepal.org ई वेबसाइट में मैं आगे का लग सक्कू सामग्री फिर भेटाई सक जी था उ बाहेक सर्पदंश होका उपचार कराइना एंटी भेनम सेंटर का फोन नंबर ई कहाँ हो कौन ठाव में बा वहाँ संपर्क मनाइया के हो ई सक्कू बात यही में विस्तृत रूप में डेगिल बा उ वेबसाइट में आकुर ढेर चीज बा अनुसंधान हुईलक न्यूज पेपर में अथवा पत्र पत्रिका में छपा गईलक आर्टिकल हुईल स्वास्थ्य मंत्रालय वा विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्पदंश संबंधी प्रकाशन ई सक्कू बात वहाँ भेटाई सक जेठा विद्यार्थी वा अनुसंधान कर्ता हुकन कलाक ई वेबसाइट एकदम महत्वपूर्ण रहल बा ई परियोजना चाहिँ अंतरराष्ट्रीय रोटरी इंटरनेशनल का रोटरी फाउंडेशन का ना बा वाकर एक ठो ग्लोबल ग्रांट ले संभव हुलक हो वहाँ फिर हमारा ढेर ढेर धन्यवाद देहटी
1: संभव भएको हो र उहाँहरुलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौ
2: तहरा राजा जी का दिलवा टुट जाए तहरा राजा जी का दिलवा टुट जाए उफ बल्ल घरक भेटा निखौराइदा
3: मुस्कान रिछाई घरक भेटा हामी निके निउराइ ठोकीका खेतमा सखलारनका लाग मिनी लै जाई पर्ना रह
4: आब्बा वराइटा डांसी बाडा
3: ले ले मैं मिनी बना कर ढोई दिया तू ले जा दियास ना
4: हाँ बैठा दाई ओहो हेरो यहाँ भिट्टा मत बिला को बा माथिले चबड्डी है पर टीका हाँ चबड्डी अय्या दाई सब काट डरल
3: दाई खै खै कहाँ काटल छाई
4: यहाँ दाई ये दाई ना जम काटल
3: अरे लेव हाली क्यों बाटो मर छ मुस्कान हट सब काट डरलस लेव हाली
5: काबिल काकी काबिल
3: हेरो ना राकेश मुस्कान न सब काटलस कल
5: ना त्याओ काकी ओ मुस्कान न्या त्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई हलचल नहीं करा रखना
3: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो टा
4: बैठा
5: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना दी ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटलक हाथ भर नहीं चला खना
3: बैठा भैया सबो कटलक ठाव आंदर पांजर चीर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले चूस का बीस पोर निकले ना हो कि
5: नहीं नहीं काकी सबो कटलक घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई फे नहीं हुई पानी फे नहीं बुझली
3: ओसिन हो कल से झरमेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबो कटलक ठाव में लगा दी उठा ना नानू
5: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता कि झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फे प्रयोग कराने हुई बुझली
3: बुझनु नानु बुझनु
5: बिना काकी रामेशाना मोटरसाइकिल लेखाई कही था झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी भेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई जा जाई टा अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गाँव से कौन एंटी भेनम केंद्र लगा पर था कही का snakebitenepal.org का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें हाँ डाटा हम कई का हरा पुरा हाँ हो ली snakebitenepal.org वेबसाइट फिर खुला हाँ हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में कुछ सर्पदंश उपचार कई जिन आ रही था हो वहाँ ले जाए पुरान मुस्कान है ना
3: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
5: लेव लेव लेव काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा ला रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान

0: না বচাই শিখ যাই
1: উইঠা উইঠা याद करी सपवा डसला से मोटरसाइकिल स्वयंसेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाख ज्यान बचाई वा कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगा कर फोन में से सुझाव ली
2: मुसाकल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपोहन व्यक्ति की छुना चलेना करनी हुई कबूकाल मोल के खा समझल सांप फिर काट से संभव हुई सम कटुया सप्पो फोटो खींच क डाक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सप्पो विषहार अलग निरलग पहचान कई ख सही उपचार कर सहयोग पुठा
1: यदि समय में उपचार कर से गिल कल से सप्पो डसलक मन यहाँ बचाई सक जिठा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक जिठा सप्पो डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डारी यही ले ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी क्लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाई क्लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक जिखा अठरा बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्ती बाटी आपन आन्जर पान्जर सापन आइनी ढिएक लाग आपन घरक आन्जर पान्जर सरसफाइमा विशेष ध्यान दिए पर्था याकरलाग परिवारक हरेक सदस्यक भूमिका महत्वपूर्ण रठा सँगसँग सर्पदंशक न्यूनीकरणका लाग समुदाय फेद जागरूक हुई पर्था कटी ऐना अठारक और विज्ञ व्यक्ति हुकनसे करलक छलफल लेख ऐना बाचा कर्ती आजुक यी प्रस्तुति मसे सहकर्मी शङ्करया हुक्र ओमय पुष्पा चौधरी बिदा हुइटु नमस्ते
3: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान अतिथि हुक्र बटुलक उहाँ हुकनक निजी विचार मान्जैने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजनाक तर्फ से अभिव्यक्ति हुइलक आधिकारिक विचार गैख माननी हुई
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा

0: Koile Paniya.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पुछु।
0: हेतरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज 12 बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
2: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
0: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
2: अनि सुरक्षाको कुरा नि? अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
0: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
2: अनि शुल्क?
0: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
3: हाम्रा विशेषताहरू:
0: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
2: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
0: खेलकुदमा विशेष जोड,
2: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
0: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
2: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
0: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज 12 बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081537505।
4: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
5: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
4: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
5: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
4: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
5: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
4: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
5: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
4: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
6: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लाइन से शुरू कीन जाए।
5: हाँ दीदिया,
7: स्टार फर्नीचर लैंड, शिक्षा कार्यालय के सामने, बीपी चौक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680073 70 और 98195067 67 82।
8: यो कृष्ण सार FM
9: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ति के तेज।
10: सारेगामा कारवा, the perfect gift for your loved ones.

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते। मैं हूं सारा अली खान
0: और मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट।
2: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं हम।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी